बंटी बबली हम है वो नहीं। अब जब तक उन्हें पकड़कर चार चपेड़े नहीं लगा देती ना, मैनू चैन नहीं पाएगा।